हे वाहिगुरु जी, एक ना कईयां नू मार्ग पाए तुसदे मार्ग ते पा दिना है, कईयां नू तुसदे मार्ग ते पा दिना है और कईयां नू तू आप ही कुराहे पा दिना है। फिर समझ लेना ये मेरे अंदर दी भावना नू फल लगना है। हुण मैनू महसूस होया कि मेरी संगत माड़ी है, मैं चंगी संगत करना चाहुंदा, अंदर फुरना बन गया ना कि मैं चंगी संगत करना चाहुंदा, मैनू कोई ऐसा संघ मिल जाए। फिर वो मालक ने ऐसा संघ दे देना है, तुहानू चंगी संगत मिल जानी है। पर पहला अंदर भावना बनानी पएगी, फिर उन्हू फल लगना है। मैं आ रस छड़ना चाहुंदा, विकारां वाले बुरियाइयां वाले ये रस मैं छड़ना चाहुंदा, वो छड़वा देगा। पर अंदर भावना ते बनाओ ना, पहले अंदर भावना ते बने। अंदर मैं ये माड़े कर्म छड़ना चाहुंदा, ये वाहिगुरु जी मैं अग्गे तो माड़े कर्म नहीं करना चाहुंदा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पवजल फेरा, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग। वो उताई मार्ग पावेगा जे मैं बेनती करांगा। जे मैं चाहुंदा ही नहीं उस रस्ते नू छड़ना, ते वो मालक जी किदां छड़ा लेणगे। कई बारी आपां इह वी बचन सांझे कीते, काम क्रोध लोभ मोह हंकार मैनू बड़ा चंगा लगदा, पर जे मैं इहदे तो पिछा छड़ाउणा चाहुंदा फिर अरदास ते करनी पएगी, तां ही उह पिछा छड़वाएगा। जे मैं बेनती करांगा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ावो, ताई वह मैनू छड़वाएगा, उस रस्ते पाएगा। तो जे मैं चाहुंदा ही नहीं तो वह किवें पा देगा। फिर तो करमी आपो अपनी है, फिर तो मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। पहला मैनू अंदर अपने भावना बनानी पएगी, फिर उन्हों फल लगना है। ये वाहिगुरु जिन्हों अंदर भावना माड़ी सी वह कुराहे पै गए, तो जिन्हों अंदर भावना चंगी सी उन्हां नूं तू सिद्धे मार्ग ते पा दिता। पर पाउण वाला तू ही है, कोई सिद्धे मार्ग ते पै गया कोई पुठे मार्ग ते, ये हुक्म तेरा ही है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, बस हर एक दी सोच देख के तू उस तरह दा फल ला के उन्हां नूं उस तरह दे रस्ते पा दिना, मार्ग दे उत्ते तोर दिना, जां उन्हां नूं उस तरह दा संग बख्श दिना। जिहड़ा गुरमुख बन के नाम दा रस माणदा है, ये शब्द उहदे उत्ते टुकदा है। ये उहदी अवस्था नूं गुरु रामदास महाराज जी बयान कर रहे हैं, और ये नहीं कि केवल बयान कर रहे हैं, तुसीं इतिहास सारे जानदे हो। जदों लाहौर तों सोढ़ी चल के आए, उहनां नूं पता सी कि गोइंदवाल साहिब सोढ़ियां दा पुत्र भाई जेठा गुरु अमरदास महाराज दे दर ते आया भी है ते व्याया भी गया, बड़ा ठाठ बाठ होएगा। ते जदों आए आके जदों गुरु रामदास महाराज दे सिर ते मिट्टी दी टोकरी देखी, सारा शरीर मिट्टी नाल भरिया, ते उसे वेले अग बबूले हो गए, अखां लाल मूँह च कबोल बोलन लग गए। कहिंदे लैके चल सानू गुरु अमरदास महाराज कोल, तू इस घर दे विच व्याया होया, ये मिट्टी दियां टोकरियां ढोना। जदों गुरु अमरदास महाराज कोल लैके आए ना, ते जदों कबोल बोलन लगे ते गुरु रामदास जी हाथ जोड़ के कहिंदे, धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह, इन्हां नूं माफ कर दिओ क्योंकि इन्हां दी सोच ही इदां दी है। ये जिद्दां दी इन्हां दी सोच है उदां दे बोले बोल रहे ने, इन्हां नूं समझ ही नहीं आ रही ये दर कैसा है, ये घर कैसा है। ये मिट्टी दियां टोकरियां दिहाड़ियां लाउण लई नहीं है, ये सेवा हो रही है, ये सेवा है। इन्हां नूं की पता सेवा की हुंदी है, एक नूं समझ आ गई एक नूं नहीं आई। इस वास्ते वो कहिंदे, महाराज तुसीं आप ही कृपा कर दिओ, ये ना समझने इसलिए इस तरह दे बोल बोलदे आ। गुरु रामदास महाराज आप ही कह रहे ने, कहिंदे हे वाहिगुरु जी, तुसीं आप ही कईयां नूं मार्ग उत्ते पाउण वाले हो, आप ही उन्हां नूं तुसीं जिहड़ा उह कुराहे पाउण वाले, ये सब तुहाडा ही हो।

वार श्री भगवती जी की बात शाही प्रथम भगवती स्मर कै गुरु नानक लीते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास ही सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय।

उनका सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रसियारे आई तू देख देख फतेह। बिरद की

तुमरी कृपा में सुख नेर, कोई न जाने तुमरा ऊँचे थे ऊँचा भगवंत। सगल समग्री तुम

दोहरा गया भैया काल की तवे जलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की, जो प्रभु को मिल

रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वडियाई।

संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मान चितवहे उद्दम, जा आहर हर जियो प्रया, सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बहिता, कोय ना किसकी तरया, सिर से रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया, उड़े उड़ आवे सैकों सां, तिस पाछे बचरे छरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में ही सिमरन करया, सब निधान दस अष्ट सदा, ठाकुर का

सब निधान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पर भरिया। राग अस महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहीं तुझी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया बह संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी।

जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण हाख वखाणा जो सेव हैं तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाणा हर ते आवही तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तेना तूटी जमकी फांसी जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन से बया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी।

जी कर किरिया खटक्रम करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू उने चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई ओं पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदे आप विछोड़िया आ मिलाया तू दरिया सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खे विजोग मिल विछोड़िया संजोगी में जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पहले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तहें डूबी अले मान एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ।

प्यासा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें चार कोई अवर ना ध्याऊं, जो वर चहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखा मारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए।

बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुही सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जब आकर्क करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहते नरालम जानत बेद भेद अर आलम।

राम कली महला तीजा अनन एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां वाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां।

रिद कर प्रगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नाश सुख टल गुर सेविय अहिन सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सिफत खसम दी नूरे अरसों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वैसा हो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठिया सोही है

कौर सतनाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरुप्रसाद तुदया गय अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड़ियाई कोई नाओ न जाने।

0: बड़ पागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन माणक संतोखेओ गुर नाम दरायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दरसायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनपो ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग संग लीना गुर शब्दे मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीव साज सत गुर संग लीना गुर अर्जन कर गुर रामदास अपरंपर बीना।
1: खेल गुड़ो कियो हर राए संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो सो जस कल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वरयो गुर अंगद।